इस वर्ष पूरा देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का स्मरणोत्सव मना रहा है। आइए देशव्यापी हर घर तिरंगा में वंदे मातरम के भाव को मन में रखते हुए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले वीरों को नमन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 9 से 17 अगस्त 2026 राष्ट्रगीत वंदे मातरम को समर्पित हर घर तिरंगा में भागीदारी करते हुए वंदे मातरम का उद्घोष कर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करना ना भूलें। हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा।

0: Those were some of the major stories we are tracking for you at this hour. We'll get back with more developments on the other side. Stay tuned to Beyond World is One.
1: वंदे मातरम का उद्घोष कर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करना ना भूलें। हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा।

साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है।

0: A hug on stage has triggered a fresh political row between the Congress and the BJP. After Congress MP Rahul Gandhi took a swipe at Prime Minister Narendra Modi's hugs with foreign leaders. Speaking at an event, Rahul Gandhi questioned the idea behind the PM's interactions with foreign leaders. He then hugged Congress leader Sandeep Dixit on stage, who jokingly asked if Gandhi was thinking of Italian Prime Minister Giorgia Meloni.
1: इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस अब पता नहीं किसने डाला कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी
2: एक चीज पूछ सकता हूं हाँ मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट द बीच

0: And with that, it's time for us to slip into a very short break. Don't go anywhere. More news and updates will follow on the other side. You're watching Beyond World is One. Stay tuned.
1: वंदे मातरम का उद्घोष कर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करना ना भूलें। हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा।

वंदे मातरम का उद्घोष कर गर्व के साथ तिरंगा फहराए और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करना ना भूलें। हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा।

0: इस वर्ष पूरा देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का स्मरणोत्सव मना रहा है। आइए देशव्यापी हर घर तिरंगा में वंदे मातरम के भाव को मन में रखते हुए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले वीरों को नमन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 9 से 17 अगस्त 2026 राष्ट्रगीत वंदे मातरम को समर्पित हर घर तिरंगा में भागीदारी करते हुए वंदे मातरम का उद्घोष कर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करना ना भूलें। हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा।
1: French football turns the page. Zinedine Zidane is the new head coach of Le Bleu. The French Football Federation has officially named Zidane as successor to Didier Deschamps, who steps down after 14 years in charge. For France, this is more than an appointment. It's the return of a national icon. Zidane was the heartbeat of France's 1998 World Cup triumph, scoring twice in the final against Brazil. Went on to win the Ballon d'Or the same year and led Le Bleu to Euro glory in 2000. As a manager, Zidane delivered an unprecedented 3 straight Champions League titles with Real Madrid. Now, the man who gave France its greatest footballing memory takes charge of its future. A national hero is back home, this time in the dugout.